हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: तुर्किया सां ईरान जा गहरा ऐं तारीख़ी लाॻापा आहिनि। परॾेही वज़ीर अब्बास राची ऐं मोहम्मद बाकर कालिबाब मुनासिब वक़्त ते पाकिस्तान जो दौरो कंदा। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया दिफ़ाई मुआहिदो खिते में अमरीका बाबति तब्दील थींदड़ सोच जो अकास आहे। खिते जा मुल्क हाणे पंहिंजी सलामतीअ बाबति नए अंदाज़ सां सोचे रहिया आहिनि। खिते जी सलामती लाइ परॾेही कुवतनि ते भाण बदरान हक़ीक़त ते ॿधल इलाक़ाई क़दम खणण ज़रूरी आहिनि। उबूरी मुआहिदे जी भञकड़ीअ ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं।
1: शहीद जान मोहम्मद महर जे कातलनि जी गिरफ़्तारी लाइ डीजी आई सखर खे ॿीहर टास्क ॾेई छॾियो आहे। प्रिया कुमारी जे बाज़ियाबी लाइ नए सिर कम कयूं पिया। सगरार ऐं में ॿीहर कुझु माण्हुनि खां

0: ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
1: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सजन सुमत अठियारी अरिखी आवाज 91
1: is brought to you by
2: Dex Oil
3: काबले एतमाद मायार
2: इस स्टोर से नाम ले
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
1: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट
6: गवर्नमेंट पेंशन ऐं ॿियनि सहूलियतनि बाबति 1997 जे हुकुमनामे में पिण तरमीम जी मंज़ूरी ॾिनी वई। सदर पारां हारून अख़्तर खे वज़ीर आज़म जो सनत ऐं पैदावार बाबति ख़ुसूसी सलाहकार मुक़रर करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई आहे।

अमेरिकी सदर ट्रंप जो जंग में नुकसान जो हर्जानो ईरान का वसूल संदसि चवण आहे त अपना हंगू साफ कयूं वयूं आहिनि। ईरान खिलाफ़ कार्रवाइयूं तेज करे सघूं था, ईरान लाइ मसलो पैदा करे सघूं था, पर उहे हाणे कंगाल थी विया। हाणे ईरान वहन ईरान कयो वेंदो।

ईरान में नए फौजी बंदी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अयतुल्ला खामनाई छह नवा टॉप मिलिट्री कमांडर मुकरर करे छड़ा। ईरानी मीडिया मूजिब मुकररियों जनरल स्टाफ पासदारन इनकलाब एम्बेसी में कयूं वयूं। मेजर जनरल अहमद वैदे के मेजर जनरल के अहदे पासदारन जो कमांडर इन चीफ मुकरर कर वो है। रियर एडमिरल उज़माई आर आईआर जी कमांडर ताइब बेसिस फोर्स जो कमांडर मुकर्नल अली हथियारबंद फौज जो सरबराह मुकर्रर मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर सुप्रीम लीडर जो सियासी सलाहकार एंड डॉक्टर मोहसिन रज़ाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में खुसूसी नुमाइंदो मुकर्रर।

वफ़ाक़ी काबिना मके गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदे खे तारीख़ी क़रार ॾेई छडि॒यो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त मके दिफ़ाई मुआहिदे जो मक़सदु कंहिं बि सूरत में जारियत न आहे। हीउ मुआहिदो टिनी मुल्कनि विच में ख़िते में अमुन सलामती ऐं खु़शहालीअ लाइ आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी काबिना खे ब्रीफिंग ॾींदे हुरमिन शरीफ़नि जे तहफ़ुज़ जी ज़िमेवारीअ खे पाकिस्तान जे अवाम ऐं हथियारबंद फ़ौजियुनि लाइ अहम फ़र्ज़ क़रार ॾिनो ऐं पाकिस्तान सऊदी अरब तरक़िया दिफ़ाई मुआहिदो पहिरियां खां मौजूदु सहकार जो तसलसुल आहे। शहबाज शरीफ़ इहो बि चयो त आज़ाद कश्मीर जे अवाम मुस्लिम लीग नून खे वोट ॾिना। कश्मीरी अवाम जो वोट नवाज़ शरीफ़ ते भरपूर एतमाद जो इज़हार आहे।

कराची जे इलाइक़े करीमाबाद अंडर बाईपास अंदर तेज़ रफ़्तारी सबबि मोटरसाइकिल सवार ॿ ॼणा फोत रेस्क्यू ज़रियनि मूजिबि हादसे में फोत थियलनि जी सुञाणप अज़हर वलिद ज़फ़र हुसैन ऐं शहबाज़ वलिद ग़ुलाम अब्बास तौर थी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो ब्यूटी सोप सां ग्लोइंग स्किन जो इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची पसी है.

चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र मान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है, ये दुनिया जी जाती है।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद FM 91.6 सिंध जो आवाज। ओ पिता जा पिता ए
1: बसे नूर। चैट इज ब्रॉट टू यू
2: में अब पे रहेंगे
1: सा कुरान के समझी बुध फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह नव जी एफएम
0: मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: अपना शहना घर अटियारी की आवाज
1: GFM
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
3: सोना युगिया ग्रेनुलर मिट्टी
4: सहूलतन बाबत 1997 जे हुकुमनामे में तरमीम जी भी मंजूरी डिनी वही हारून अख्तर के वजीर आजम जो सनत ए पैदावार बाबत सलाहकार मुकरर करण जी भी मंजूरी मियां मालूम मुश्किल सुञाणप न थी अगवे जो हथ आयल ला मुंतकिल कयो वियो रोज समय एकड़न ते पोखियल फसल पानी हेठ थी वो गोठान पारा आपाशी अमले का घारो बंद कराने जो मुतालबो उबावड़ो वेझो अदालत में फरार थियल बिन बदनाम धाड़ेलन वारे वाके जो केस दाखिल SHO जी फरियाद ते वाके जो केस 12 अहलकारन मथा उबावड़ो थाने ते दाखिल कयो वयो गफलत ए लापरवाही करण जा कलम में शामिल गुजरियल डी बदनाम धाड़ेल राहिब ए मोरियो शहर उबावड़ो की अदालत में फरार थी वया हुआ सिंध समेर जो तैयारियों जा

0: आप सुन रहे हैं नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुनते रहो GAFM 91.6।
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11:15 AM.
2: This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream.

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6

आर शुरू इन टू जियो रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं RJ रुखसार सिंध की आवाज। हैव यू, कैसे हैं आप? आई होप सी जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल तिप्टस्तर खोले एक साउंड एकदम स्ट्रांग हल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 PM आकर मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जानी हो सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। तो प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त आ जाता है 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट द नेवर अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। तो फिर खुदा खैरियत है मौजूदा, तो वक्त के लिए खुदा खैरियत है मतलब।

ओके यहाँ पे मुझे ज्वाइन मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप की साइन कीजिए 881 पे. कमेंट करने के लिए facebook.com/hagelish आप कर सकते हैं. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 03000113488. तो इसी के साथ अब से ठीक ठीक ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा अगले काम होगा. गाना सुनाओ और इसी के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारिय साई ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी कंबान वधायन लाए तवासा गदाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जै जो मोती जड़ो दाणु छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
0: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो. आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ए एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खा रिपेयर करे. सिर्फ
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल और फ्रेश आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिटास्की के प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोप्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ओके, ये किसका गाना है?
1: आतिफ असलम का।
0: आतिफ असलम, आतिफ असलम का क्या टाइटल है इसका?
1: ये?
0: क्या टाइटल क्या है इसका?
1: मुझे ये नहीं पता, मैंने गाना
0: गाना आतिफ असलम का, चले मैं आपको आतिफ असलम का सुनाती हूँ जी, मैं ये सर्च करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये गाना जब मैंने सर्च किया है तो कुछ है कि, और इसी के साथ आगे चलते हैं, स्टे ट्यून्ड।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे.

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: प्रभात मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसेनु
2: आपी डीपीडी बिन सालेंजा डिप्लोमा प्रोग्राम्स एलएचवी सीएमडब्ल्यू सीएनए खास सहूलतों स्कॉलरशिप मौजूद बिन सालेंजे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे तो डीपीडी प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाए फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया हिते तवाके मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम जदीद लेबोरेटरीज मुकमल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 43 सालन जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जो

0: आवाज भी सिर्फ की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिर्फ की आवाज।
1: GA सखर FM 88
0: सखर की आवाज। वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, और इसके साथ साथ हम आप लोगों की लाइव कॉल्स को लेने जा रहे हैं लाइवली एंड 03000113488 के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: नूर हुसैन फ्रॉम बदीन।
0: नूर हुसैन फ्रॉम बदीन, कैसे भाई? ठीक ठाक,
2: फर्स्ट क्लास बाजी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हो?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइएगा क्या प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: जी बाजी, ये गूगल सुन रहे हैं FM पे।
0: ओके, गाना सुनाएंगे?
2: गाना है ना, दिल टूटा है तेरे प्यार में।
0: टाइम टाइम मतलब बताए ना?
2: नहीं पाकिस्तान
0: आपका हुआ, चलो आज गाना नहीं सुनाएंगे।
2: ये दिल आपका हुआ ऐसे ही है ना, ये दिल आपका हुआ।
0: चले कोई बात नहीं, हाफिज शर्मा आ गए। कोई बात नहीं, एंड इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। इतने अच्छे

0: Okay, go on next caller. Hello. Hello. Waalaikum assalam. Kaun kahan se?
1: Liaqat Ali.
0: Liaqat Ali kaise hain? Theek thaak hain?
1: Alhamdulillah.
0: Okay, program sun rahe?
1: Ji ji bilkul.
0: Sun rahe? Kaun sa program hai?
1: Zindagi Guzar hai.
0: Zindagi Guzar hai. Okay, gaana sunayenge?
1: Bilkul.
0: Suna dein.
1: Sona na chandi na koi mahal jaane man isko main de sakunga phir bhi ye vaada hai tujhse tu jo kare pyar mujhse chhota sa ghar tujhko dunga tuk tuk sakati banunga.
0: Okay, सारा नहीं गाना, सारा नहीं गाना. किसी को डेडिकेट करना है?
1: आप ही को करना है.
0: Okay, thank you so much. और गाना प्ले कर रहे हैं जी, ये वाला और गाना सोना ना चांदी ना कोई महल. आजकल के दौर में तो वाकई बहुत मुश्किल हो गया है जी ये सब कुछ देना.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
6: See you bye.
7: सदर हाई कोर्ट में एडिशनल जी मंजूरी डिनी वही सिंध हाई कोर्ट ए लाहौर हाई कोर्ट में कुछ जजिस के वाद की पिण मंजूरी डेई वही। सुप्रीम कोर्ट के जजिस जो पगारू अलाउंसिस ए पेंशन बेवफाकी आईनी अदालत के जजिस के बराबर करण की मंजूरी डिनी वही। हाई कोर्ट के जजिस के रिटायरमेंट पेंशन ए बेन सहूलतन बाबत 1997 के हुक्मनामे में तरमीम की भी मंजूरी डिनी वही। हारून अख्तर के वजीर आजम जो सनत ए पैदावार बाबत सलाहकार मुकर्र करण की भी मंजूरी।

डीएस वेझो नामालूम शख्स जो लाश है तो सुणप नथी। अब्दाल शाख वेझो हथ आयल लाश के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। ठुल वेझो गढ़ी हसन डिस्ट्रिक्ट के आर डी 33 वटा घारो समय एक रसुल पानी हेठ अची वियो। गोठाणन पारां आपाशी अमले खां घारो बंद कराइण जो मुतालबो। वास दाखिल एसएचओ जी फरियाद ते वाके जो केस 12 मावड़ो थाने ते दाखिल कयो वियो। गफलत ऐं लापरवाही करण जा कलम में शामिल। गुज़िरियल ॾींहुं बदनाम धाड़ियल राहिब ऐं मोरियो शहर बावड़ो जी अदालत मां फर

0: हक से महरूम है। इस
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया या जो मोती जड़ो दाणो छटाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
6: GFM 91.6
7: है जिसका नाम है बोलो तो माने। और बोलो तो माने में आज का जो टंग ट्विस्टर है जो कि आपने कह के दिखाना है वो कुछ इस तरह से है कि गल्लू का काला कव्वा कड़क कचोरी कुतर गया। ठीक है, ये कहना है कल्लू का काला कव्वा कड़क कचोरी कुतर गया, इसको कहेंगे और जल्दी जल्दी बोलेंगे। जो बंदा सही सही और जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा बोलेगा वो विन कर जाएगा। ठीक है जी, तो कल्लू का काला कव्वा कड़क कचोरी कुतर गया, इस तरीके से आप लोगों ने बिना रुके बिना अटके इसको कह के दिखाना है। सो

0: होगी, ठीक है? ब्यूटीफुल सॉन्ग. और आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 के ऊपर. और साथ साथ कमेंट्स की तरफ मूव कर रही हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स. स्मार्ट किशोर कहते हैं गुड मॉर्निंग, अब लाइव चल रही है और न्यूज भी, बस मैं झूठा हो जाता हूँ. कैसे? वाई? और नूर हुसैन तुनियो ने हमें ज्वाइन किया है, फेसबुक पे कमेंट किया है जी, एंड कहते हैं कि हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू. अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं. इस्मा किशोर क्या कहते हैं, मैं जरा पढ़ लूँ इसको.
1: से ये मिलती जाए जैसे कोई मेरा,
0: कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर ले, लग जाएगी कॉल, लग जाएगी. आपसे हम गाना भी सुन लेंगे, ठीक है? सो ट्राई तो करें, तो गाना भी हम आपसे सुन लेंगे, नो इश्यू. क्या हल निकाला जाए इसका कि बहुत सारे लोगों की कॉल नहीं लगती, और तकरीबन हर शो में सबकी यही शिकायत होती है कि हमारी कॉल लगती नहीं है, और लगती है तो आप रिसीव नहीं करती. तो आगे चलते हैं.

0: 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स जो कि आप लोग करेंगे और साथ साथ हम मैसेजेस की तरफ भी मूव करेंगे. कमेंट भी हमें रिसीव हुआ है सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपसे. तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान. ओके, रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं. जी थैंक यू सो मच. और इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय सबाद बातिन. इसको सुनेंगे और कॉल्स लेंगे बहुत सारी.
1: खवातीनों नाजी सबात पार्टिन और रैकस्टार आपको वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है. बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए. किसी भी वाइब इंसान के जिम्मेदार हम नहीं होंगे. शुक्रिया.
2: तेरे बिना दिन सम लगते

0: ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: अभी खोला है भैया।
0: टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
1: नहीं नहीं फोन सुनाया अभी।
0: वेरी बैड। चले थोड़ा सा सुने फिर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। 03000113488 मेक श्योर वही लोग कॉल करें कंटेस्टर बोलेंगे। और जो लोग कॉल करते हैं मतलब बार बार कॉल करते हैं, लगातार कॉल करते हैं, डेली कॉल करते हैं, तो आप लोगों ने डेली कॉल नहीं करनी, आप लोगों ने एक या दो दिन का गैप देके फिर कॉल करनी है। तो मैक्सिमम ऐसे कॉलर्स जिनकी कॉल नहीं लग पा रही है या जो दो या तीन दिन के बाद कॉल करते हैं उनकी लग सके, ठीक है, ताकि इसका सारा ब्लेम मेरे ऊपर ना जाए, इसका ब्लेम कहीं और भी चला जाए, ठीक है जी। असल में जहां पे ब्लेम जाना चाहिए वहां पे जाता नहीं है, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है। खैर कोई बात नहीं, एक और कॉलर। हेलो हेलो हेलो हेलो कोई है? आवाज नहीं आ रही है। वेरी बैड।

0: Okay, ji, next caller. Hello. Hello. Okay, ji, awaaz nahi aa rahi hai. Hello.
1: Hello, hello. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun kahan se?
1: Main Mohammed Ismail Punjab se.
0: Mohammed Ismail, kaise hain? Theek thaak program sunte hain?
1: Ji ji, alhamdulillah, main aapka program roz sunta hoon.
0: Kya naam hai iska?
1: Zindagi Gulzar hai.
0: ओके टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगी
1: जी तक
0: थोड़ा सुनाओ थोड़ा सा सुने कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया
1: कल्लू का काला कौवा
0: कड़क कचोरी गया
1: कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया
0: यस
1: कल्लू का काला कौवा कचोरी
0: आप तो कौवे और कचोरी में बीच में ही अटक गए हैं आपसे ना हो पाएगा और कुछ कहेंगे
1: जी आप सुनाएंगे खैर खैरियत है और
0: जी बिल्कुल खैर खैरियत है
1: जी मैं आपसे ये कह रहा था कि आपका जो भी प्रोग्राम है मैं अच्छे से सुनता हूँ बहुत शौक से सुना करता हूँ एवरी मंडे टू थर्सडे
0: क्या बात है इतना शौक से सुनते हैं
1: आपका टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कभी कभी कहती थी तो ये अपना सुलभ महीना था उसमें आपने कहा था कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि कभी कभी मैं सिर्फ सुनाती रहूँ आप लोग सुनते रहे
0: अच्छा ये मैंने बोला था
1: ये आपका टाइटल और ये जो बात है आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है
0: ओके जी थैंक यू सो मच थैंक यू कि आप इतना शौक से सुनते हैं भाई थैंक यू
1: जी जी
0: और कुछ कहना है
1: नहीं बस और कुछ नहीं कहना है एक अगर अरिजीत सिंह आप सुना दें अच्छा से आपकी पसंद का तो अच्छा हो जाएगा
0: अरिजीत सिंह का
1: नहीं नहीं अरिजीत सिंह
0: अरबिक सॉन्ग सुना दो अरबिक सुनाती हूँ ठीक है
1: जी जी आप अपनी पसंद का कोई अच्छा है
0: ओके जी अभी सुनाते हैं आपको अरबिक सॉन्ग 03000113488 के ऊपर बैक टू बैक लाइव कॉल्स लेंगे 03000113488 एक और कॉलर हेलो
2: अस्सलामुअलैकुम
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द आपका ही तो इंतजार था ताकि हमारे सर में हो दर्द ये तो शेर बन गया है ना
2: हाँ बिल्कुल
0: चले इसको आप ना अपनी डायरी में लिखिएगा ओके सरदर्द प्रोग्राम सुना
2: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हूँ
0: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है सरदर्द ओके टंग ट्विस्टर सुना
2: कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया कल्लू का काला कौवा कड़क
0: ओके स्टॉप मतलब क्या जबरदस्त फ्लो जा रहा है आपका और ये दिन ब दिन बेहतर होता चला जा रहा है क्या क्या राज है इसके पीछे हमारे सुनने वालों को भी बताओ
2: तो मैंने बोलना सीखा
0: कैसे बोलना सीखा है
2: मतलब आपका शो सुन के तो मैंने बोलना सीखा है
0: मेरा शो सुन के बोलना सीखा है अरे वाह क्या बात है मतलब मैं
2: बहुत खुशी थी लेकिन कॉल नहीं लगता
0: हाँ बस मैं ये कहूंगी कि जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन बोलना सीखा
2: मेरी
0: हाँ जी उनको बोलना आ जाएगा और मेरे ख्याल से वाकई एक अच्छी चीज है उनको ऐसी चीज बोलना आए और अच्छा

ट्विंकल बाय बिलाल सईद, इसको सुनेंगे, आगे चलेंगे और कहाँ गया हमारा गाना, हमारा गाना ये रहा।

0: It's 12:30 p.m. It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Agar khoobsurti chahiye to Arch apnaye. Arch beauty cream, aloe vera aur avocado sirf 3 dino mein. Acne and scars reduce karke skin ko banaye radiant, sparkling aur dildar miracle glow. Arch beauty cream.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं कीमती इनामात।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद और जदीद डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
5: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए FM की आवाज,
4: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनक ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया छकाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाब करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: सोना से है कामयाबी और ज्यादा फायदा।
2: अभी बुधो प्या जिए सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Hello, Gigi. Welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार हैं और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का जी और एक बजने में अब बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी रह चुका है. सो लास्ट में हम विनर के और लास्ट में हम लास्ट में लकी कॉलर भी लेंगे. सो 03000113488 के ऊपर

0: लास्ट में लास्ट लकी कॉलर देखते हैं कि कौन है. हेलो,
1: कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी उतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी उतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी उतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी उतर गया. कल्लू का काला कौवा
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: SRH.
0: हमेशा लास्ट में आके टंग ट्विस्टर क्यों बोलते हैं आप?
1: इसलिए कोई मुकाबला नहीं करता ना, फिर आगे मुकाबले का हिस्सा बनना पड़ता है.
0: वाओ, मतलब क्या लॉजिक निकाला है आपने कि मुकाबला नहीं करना पड़ता. लेकिन फिर फायदा क्या जब सेगमेंट ही खत्म हो गया हो तो, है ना?
1: मतलब ये कि बोलने वाला तो बोल के चला जाता है ना, उसके मुकाबले में देखते हैं कौन आता है. जब कोई नहीं आता तो फिर कॉल करनी पड़ती है. लेकिन आपने कहा था कि जिनकी कॉल लगती है कम से कम दो दिन के बाद कॉल करे, लेकिन इसके मुकाबले में कोई आया नहीं तो फिर मुझे आना पड़ा.
0: चलें फिर आज की अच्छी बात भी बता दें.
1: आज की अच्छी बात ये है कि जब कोई गरीब किसी अमीर के पास सलाम करने के लिए जाता है ना, तो अमीर समझता है कि वो हमसे कुछ मांगने आया है. लेकिन ऐसा नहीं है. जब वो गरीब लोग किसी अमीर को सलाम करता है, वो तो उसके लिए रब से सलामती मांग रहा है उससे सलाम करके.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और क्या खूबसूरत बात की जी. और कुछ कहेंगे
1: आप? आदेश के नाम एक शहर है, दो लाइन का.
0: बोले,
1: ये मेरे दिल अपने खुद की बेअसी में इतना खामोश हो जा कि लबों को आ कहने में भी तकलीफ ना हो. तशरीह करोगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी बातें भी आती होंगी जो आरजे को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं.
0: बिल्कुल जी.

एरियल नामालूम शख्स जो लाश हथाए वाहे शाख वेझो हथाए लाश के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस चयो आहे त लाश कंहिं ख्वाजा सिराजो लॻी रहियो आहे जेको 2 खां 3 ॾींहं पुराणो आहे। सुञाणप लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। गढ़ी यासीन में आबादगारनि जो पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते धरणो। आबादगारनि एहतजाज कंदे कबालो स्टाफ वटि शिकारपुर लाड़काणो रोड ते धरणो आयो। आबादी विर्श करे पाणीअ जी खोट ख़तम कई वञे। पाणी मिलण ताईं एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। दड़ो लग वाली शाह सिम नाले जी खाटी न थियण खिलाफ़ रहवासी सरापा एहतजाज। मेलो रोड ते धरणो। यूसी मुरादपुर में सिम नाले जी खाटी न थियण खिलाफ़ 10 ॻोठनि जे रहवासियुनि लोयाट स्टाप ते एहतजाज कयो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त सिम नाले जे 10 सालनि खां खाटे सिम नालो गंद सां भरिजी वियो आहे। बरसातनि सबब सिम नालो ओवरटॉप थी वियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि तां घारा लॻी रहिया आहिनि। वाली शाह सिम नाले जी खाटी कराई वञे, ॿी सूरत में अदालत जो दर खड़काईंदासीं।

सिंधली वेझो नींगरी आमना शहर मिठड़ाओ कैनाल में बुडी वही गोलाणी घटाइण जो मुतालबो कयो वियो आहे। वास 13 सालनि जे मरीज आहे। दौरो पवण सबब कैनाल में किरी पियो वञे। फरार थियल ॿिनि बदनाम धाड़ेलनि वारे वाके जो केस दाख़िल। SHO जी फरियाद ते वाके जो केस ॿारहं अहलकारनि मथां वावड़ो थाणे ते दाख़िल कयो वियो। गफ़लत ऐं लापरवाही करण जा कलम बि शामिल। गुज़िरियल ॾींहं बदनाम धाड़ेलनि राहिब ऐं मोरियो शहर वावड़ो जी अदालत मां फरार थी विया हुआ। ठोल खे आर बंदि कराइण जो मुतालबो।

0: आए सबैलाई तमाम बडोदिया फाइन 14 अगस्त के संगे एक ईदी बराबर समझाय
1: त पाजी कंट्री का नी बे कंट्री में शिफ्ट थिंदो ना त अवां ते पो एहसास थिंदो त असा जो मुल्क आजाद आए इंदी असन आजादी छाए
0: आजादी दियारो वडे चले जयान फिरो समलाय आया आयो असन
2: में आज़ादी जो जश्न मल्हाइण जी तैयारियूं जारी सूबे के नंढनि वॾनि शहरनि में कौमी झंडनि जी बहार खास स्टॉल भी लगाया विया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 150 Beauty Creators, a product by Biocon International Pakistan.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए बदनल तमाम खूबसूरत मौसम मई सुने समातन से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। उर्कुलो दुआओं के समंदर सहादों की बारिश लासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागते समय से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तार तक से खुशी तक दिल से दिल तक और जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डीज कैन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आपके सिद्धरा आपके साथ मौजूद है, यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समातों चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। बिल्कुल जनाब प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो यहाँ पर अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को बताया जाता है कि आप इन तमाम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी ना खूबसूरती में किस तरह चार चांद लगा सकते हैं और किस तरह आप अपनी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप ये सीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है और आप लोगों को इस प्रोग्राम में बताया

बताता है वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो क्या क्या बातें हैं जो कि भाई बताना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जानना आप लोगों के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा सीन बन जाता है कि बहुत से लोग बड़े मासूम होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई मार्केट में अगर आप जाते हैं तो कौन से प्रोडक्ट आपने परचेज करने और कौन से प्रोडक्ट आपने नहीं परचेज करने हैं. और अगर आपका स्किन देखा जाए तो उसके हिसाब से भी आप लोगों ने कुछ चीजों का परहेज करना होता है. तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें जो कि आप जानना चाहते हैं. ऐसे के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी. ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान. सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं. यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं. आगा से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही प्यारी सी नाद के साथ. तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोग्राम में एक बहुत ही प्यारी सी नाद सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए.

0: करणो आहे ऐं शेयर करणो आहे। सो जल्दी जल्दी तव्हां असांजी पोस्ट खे लाइक कयो, कॉमेंट कयो ऐं शेयर कयो, छो त जेके जेके माण्हू असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा आहिनि उहे ॾाढा भला हूंदा आहिनि। बताइए, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सुन रहे हैं, लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि अगर 10 लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिलाते हैं तो टोटल कितने दफा जो है मिलाना हम काउंट करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने कर अवेलेबल कराना चाहते हैं, जो कि भाई बहुत एक जरूरी सी बात हो जाती है, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं उन तमाम तो लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप भी अवेलेबल कराना चाहिए नंबर से जनाब 5025907 और दूसरा नंबर है 0332738439। ये नंबर आप जल्दी से डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए ताकि आप भी इस्तेमाल कर सकें और खूबसूरत हो सकें। ओके जी, बिल्कुल, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रही। और यहाँ पर आदिल कह देखते हैं कि मैंने आईने में जो अक्स देखा, मुद्दतों से तनहा एक शख्स देखा, यूं तो चेहरे हर मुस्कुराहट थी लेकिन आंखों में आंसू का रक्स देखा। ओके वासु भाई हमारे साथ हैं, हेलो वासु भाई, वालेकुम अस्सलाम, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा, ठीक ठाक आहियो, सफ़ा मज़े में। चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, कैसी आप, उम्मीद है कि अच्छे मूड में होंगे। जी जी आप बताएं। और सादिया कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप ही आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ सादिया, आप बताएं। और मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहते हैं आपको। उनके अलावा अहद जरवार भाई हमें सुन रहे हैं, अहद भाई आपको वेलकम कहा जाता है। और निदड़ी आ चुकी कहती है अस्सलाम वालेकुम, वाले सलामत है, कैसी हो प्यारी आरजे, वेलकम टू शो, माशाल्लाह फेवरेट नाज, वेलकम कहते हैं स्वीटी को। अच्छा सोना रोमियो हमारे प्रोग्राम में मौजूद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कोयल, कैसी है, मैं ठीक है, लिखती है कि इतना दर्द ना दिया कर जिंदगी, मेरे हमदर्द बहुत कम है, हर चेहरे पर खुशियां बिखेरता हूँ, बिखेरता है तुम। और मुलाजिम भाई आपने भी शायरी भेजी है, कहते हैं टुकड़ों टकराओ जो, अच्छा चलें ये शायरी थोड़ी अजीब सी है तो इसको हम रहने ही देते हैं। खालिद आपने टॉपिक का जवाब दे दिया, इतना जल्दी जवाब दे दिया। और निदड़ी कहती है चौपा है बताओ या जस्ट उसका ही, दोनों का बताओ। ये जो भाई हमारे साथ हैं फ्रॉम लाड़काना अमीर कोरे जो भा तवाजो मोहब्बतों हैं तमाशा सगट मौजूद है। और हा जरवार तुम टॉपिक से जवाब दिनो आए, चलें ठीक है, ऐसी वेठूँ था तुम्हारा जवाब सही आया ना। अली मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद है, इसर हमारे साथ ही, वालेकुम सबको भी, इसी के साथ सबका रखा करें। मुझे बताइए कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से कौन से आप इस्तेमाल करने वाले, आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी जल्दी से वो जरा एड करते जाइए। और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोग रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by...
3: खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में। डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम ब्यूटी प्लान के साथ अदों की भरपूर और एच ब्यूटी सोप से मिला वाइट एच ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। सिंध जो आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

इस तरह काम करते हैं, वो आप हमें बताते जाएंगे ताकि हमें इस चीज का अंदाजा हो कि आप लोग जहाँ जहाँ से भी सुन रहे हैं तो वहाँ उस एरिया में व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। बिल्कुल जी, तो अगर यहाँ पर आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट करूँ तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए जनाब तैयार किए गए हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि व्हाइटिश लवली क्रीम आपके लिए मौजूद है, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपके लिए मौजूद है, व्हाइटिश का सोप आपके लिए है, व्हाइटिश फेस वॉश है, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब है, उसके अलावा लोशन है और साथ हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली अपने स्किन टाइप के बिना इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मरतबा लोग इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारी स्किन टाइप जो है ना वो कुछ सेंसिटिव सी है, हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने ऑल स्किन टाइप के ऊपर जो है ना वो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें तैयार ही इस तरह किया गया है। जिन प्रोडक्ट्स के अंदर नेचुरल अज़ा मौजूद होते हैं ना, तो उन प्रोडक्ट्स को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है ये एक नाइट क्रीम है, और नाइट क्रीम के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि नाइट क्रीम में आप क्यों इस्तेमाल करते हैं। नाइट क्रीम इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा वाला फायदा ये आपको मिलता है कि आपके चेहरे पर जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं, आपकी रंगत जो है वो जरा साफ और क्लियर हो जाती है। तो अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, एलोवेरा मिल रहा है, ये तमाम नेचुरल अज़ा जो कि इसके अंदर एड किए गए हैं। और जब व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है जितने भी साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर मौजूद होते हैं उन तमाम तर साइड इफेक्ट्स से, और साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो रिंक भी खत्म हो जाते हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम और अगर आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइटिश ब्यूटी सोप मौजूद है जनाब। और व्हाइटिश ब्यूटी सोप की सबसे खास और बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि व्हाइटिश ब्यूटी सोप जो है ना इसे हर इंसान के लिए तैयार किया है। ऐसा होता है जैसे आप नाइट क्रीम में रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और ये कुछ ऐसे गिने चुने लोगों के लिए होती है, यानी कि इन्हें टीनएजर्स लगा सकते हैं, एजेड लोग लगा सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं होती। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप व्हाइटिश का ब्यूटी सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सब लोगों के लिए है, बच सकता है। तो व्हाइटिश का ब्यूटी सोप आप रेगुलर जैसे कोई भी सोप इस्तेमाल वैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई चले सोप तो अब सारे लोग ही लगाएंगे लेकिन अब हम ऐसा है कि फेस वॉश यूज करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग फेस वॉश यूज करते हैं, तो उन लोगों को भी पीछे नहीं छोड़ा जनाब, आप लोगों के लिए भी व्हाइटिश का फेस वॉश मौजूद है। और व्हाइटिश के फेस वॉश

बात करें तो ये थोड़ा सा ऐसे चेंज तैयार किया है, जैसे व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम है तो बिल्कुल वैसे ही व्हाइटिश का ब्यूटी सोप है, लेकिन व्हाइटिश फेस वॉश की जानिब जब हम आते हैं तो इसकी अगर बनाने की बात कर व्हाइटिश ब्यूटी फेस वॉश के अंदर जो ही एड की गई है और साथ साथ ये इतना क्रीमी सा फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो है ना वो ब्राइट हो जाती है, एंटी एजिंग के लिए आपके चेहरे पर रिंकल्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन अंदर से जो है ना ऐसे फ्रेश आपको एहसास होता है कि भाई वाकई कुछ तो आप अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट आप ट्राई करके देख चुके होते हैं लेकिन जब आप व्हाइटिश का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो इतना रिफ्रेशिंग सा आपको एहसास होगा ना कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान ये तो मजे के प्रोडक्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम को लगाने के तरीके का जानना चाहते हैं तो वैसे तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल यही होते हैं कि बस आप रात के टाइम सारे कामों काजों से फ्री हो जाएं तो अपना फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करेंगे चाहे आप व्हाइटिश ब्यूटी सोप का इस्तेमाल करें या फिर व्हाइटिश फेस वॉश का यूज करें, क्लीन करने के बाद आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आप इस तरह अप्लाई करेंगे कि भाई आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए। कोई भी ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अगर नाइट क्रीम लगाते हैं फिर मसाज करते हैं ना तो उनके चेहरे पर थोड़ा सा मसला बन सकता है, तो मसाज नहीं करना कोई भी नाइट क्रीम करते हैं। और मोहब्बत जो है यहाँ पर चीज का भी अंदाजा होना चाहिए कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ आपके करीबी जनरेबल हो सकते हैं, बस उसके लिए आप 343-09 या अगर ये नंबर बंद मिले या फिर रिसीव ना हो तो दूसरा नंबर आपके लिए मौजूद है 03125025907। ये दोनों नंबर से ये आपकी आसानी के मुताबिक ही जनाब अगर आप अपने करीबी जनरेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी से अवेलेबल कराइए ताकि आप भी इस्तेमाल करें और आप भी खूबसूरत हो जाए। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। और यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को बताते चले तो आज मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल को हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रिकी सवाल है और थोड़ा सा बाकी मुझे बताइए।

हाथ मिलाते हैं तो टोटल कितनी मर्तबा वो हाथ मिला चुके होंगे, यानी कि हम कितनी दफा जो है ना वो हाथ मिलो है ना, हम कितनी मर्तबा उनका हाथ मिलाना काउंट करेंगे। समझ गए, जल्दी से बताइए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जाइए। आप लोगों को सुनाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी गाने मौजूद है, तो ये एक ब्यूटीफुल सा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो आइए जरा इस गाने को सुन लेते हैं। आप कौन है, कहाँ, बताइए मुझे। हाँ, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए।

हाई टेक ब्यूटी प्रोडक्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट बताइए मुझे जरा। और टॉपिक आज का थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको समझने में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़े से जमाने चाहिए, लेकिन इतना भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप मुझे बताने वाले हैं। टॉपिक कुछ यूं है, दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिला रहे हैं तो टोटल कितनी मरतबा वो हाथ मिलाना हम काउंट करेंगे, ठीक है। बहुत आसान सवाल है मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे जवाब पता है। बाकी जिनको नहीं पता उनको तो जाहिर सी बात है मुश्किल लगेगा। अच्छा, ये हमारे साथ हैं जी अहाल जरवार भाई, मुझे लग रहा है कि आप मान हैं। मोहम्मद हमारे साथ है, अली मोहम्मद भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। किशोर भाई कहते हेलो हाय, हम अच गया अदा के छा आयो छपा मजे में तमा के छा आयो। और अली मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम। निदड़ी कहती टॉपिक 20 या 21 दफा। ये कैसे समझाओ जरा मुझे। अच्छा, मुझे लग रहा था अहाद आप सिर्फ एक ही जवाब देंगे, लेकिन आपने सवाल के दोनों पहलू से जो है ना मुझे सही जवाब दिया है। दोनों पहलू आपने देखे, क्या बात है, इम्प्रेस्ड। प्यारी मोमना हमारे साथ मौजूद, कहती टॉपिक आई थिंक 20 हैंड्स। ओके वासा भाई कहती अदी सिडो थोरो मुझे दिमाग परे हलियो वयो आहे, मोटाए अचान त पोइ जवाब ॾियां थो। अच्छा सादिया, आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी। प्यारी मोमना, आपने गाने की फरमाइश कर दी है, लगाते हैं जी आपका गाना भी। दर्दी दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम। कहती चंदा जान को ठीक ठाक आप बताइए, और कहती हाँ मैं भी आ गई।

चाचा ये बात पूछ रहे हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स किस क्रीम में ज्यादा है, व्हाइट एश क्रीम में या डी स्किन क्रीम में। अब बात जरा आप लोगों को ये मैं जरा एक्सप्लेन करती रहूं। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है इसमें नेचुरल अज़ा मौजूद है, लेकिन जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है ना उसे डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, तो उसे डॉक्टर्स के हिसाब से जो ना उसमें वो चीजें ऐड की गई हैं, यानी कि डॉक्टर्स को लगता है कि ये चीजें आपकी स्किन के मुताबिक हैं और अच्छा काम करेंगी, तो उसकी चीजें वही जो है ना वो चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। जो कि मैं आपको वाजे बताती हूँ कि फिलहाल फिलहाल चीजें जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम में तो आप जानते हैं एवोकाडो मिल्क और एलोवेरा मौजूद है, और उसके अलावा साथ ही आपको शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया चाचा तमाम गाने जी फरमाइश करी सड़िया हलायूं था बाबा अखला खुशो में सुन रही थी, नाइस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा मेहताब अली इंटर भाई हमें सुन रही थी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आइए मेहताब अली फ्रॉम सुल्तानपुर केंट, मेहताब भाई आपको वेलकम कहा जाता है, थैंक यू सो मच। के साथ साथ किशोर कहते अरे हाथ मिलाना है लेकिन किसको कहां कैसे मैं समझा नहीं, यही तो मसला है। ओके जी, और ये हमारे साथ निदली कहती है कि एवं तुक्का मारा था मैंने देख लो वो जी अरबिक जबान में गाना था। अच्छा कहते अदा मेरे ख्याल से 10 मरतबा और आपके हिसाब से 45 आई थिंक। वो मेरे हिसाब से कैसे बताओ जरा। निदरी कहते कि पहले ही सर घूम रहा है मेरा, नींद पूरी नहीं करी और तुम्हारे टॉपिक और सर घुमा देते हैं मेरा। नहीं आज तो मैंने सोचा था आप लोगों से हल्का फुल्का सवाल पूछूंगी, लेकिन बस फिर सोचा नहीं भाई क्यों ही छोड़े।

ओके सो नाउ सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते जाएंगे और अपनी खूबसूरती को जो है ना वो एक अलग सा एहसास देने वाले हैं। खूबसूरतियां आजकल आसान हो चुकी हैं भाई, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को मशवरा देती हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो कुछ सोच कर ही देती होंगी ना। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन तमाम सारे प्रोडक्ट्स में सही वाला प्रोडक्ट जो होता है ना वो सूट करना और वो सिलेक्ट करना बहुत एक मुश्किल सा काम बन जाता है, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है ना उसका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कई मरतबा आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें फिर आप सारी उम्र जो है ना वो पछताते रह जाते हैं कि भाई काश हमने ऐसा नहीं करना था, और काश आप ऐसा जो है ना अगर कर चुके अपनी लाइफ के साथ, अगर आप अपनी स्किन खराब कर ही चुके हैं तो आप कोई मसला नहीं, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी स्किन जो है ना वो रिपेयर कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, अपने चेहरे के जितने मसाले हैं वो सारे दूर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा वाला सीन है कि आप नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं तो जी आपके लिए व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद है। कोई हल्का फुल्का फार्मूला आपकी लाइफ में नहीं है तो व्हाइट एज लवली क्रीम आपकी स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है। ये एक फेयरनेस क्रीम है, फेयरनेस फार्मूला तो हर किसी को पसंद आता है, हर कोई इस्तेमाल करता है, हर किसी के पर्स में बैग में मौजूद ही होता है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन के साथ तैयार की गई है जनाब। इसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल एड किए गए हैं, और बात यहीं पर नहीं रुकती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, यानी कि अब आपको अलग से कोई भी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करें और आप यूं चुटकियों में रेडी हो चुके होंगे। ओके जी सो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि एक फेयरनेस क्रीम है जिसे आपके घर के सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल करेंगे। इतना जबरदस्त फार्मूला अगर आपके पास मौजूद है तो भाई मैं ये सोच रही हूँ कि आपने सोचना नहीं है, बस आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई भाई सिदरा बाजी सही पई चवे। उनखां अलावा अगर तव्हां एकनी जी वजह सां परेशान आहे त एकनी खे खत्म करण जे लाइ तव्हां वटि डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब अवेलेबल आहे। ऐं जनाब डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो तव्हां नालो ॿुधी समझी वेंदा हूंदा त ही आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे, मेडिकेटेड फार्मूलो आहे जंहिंखे डॉक्टर्स ठाहियो आहे। बिल्कुलु अंदरि जेको न जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि ऐं तव्हांजी स्किन जा एक्नी त ख़तम कंदो ई कंदो, पर तव्हांजे चेहरे जा जेके निशान अची वेंदा आहिनि, एक्नी जा निशान हुजनि, कोई चोट आहे या फिर कोई सड़न जो निशान आहे, को नंढपण में तव्हां खेॾंदा तव्हांखे चोट लॻी वई आहे, फेस ते उहो चोट जो निशान आहे, उनखे तव्हां रिमूव करण चाहियो था, त पोइ तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल करे सघो था। ओके जी सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, यानी कि दो मरतबा लगाना होता है, और साथ ही साथ दो मरतबा कि आप अपना फेस वॉश लाजमी किया करें। फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फेस वॉश करने से ये होता है कि आपके चेहरे पर जितनी गंदगी होती है, डस्ट पॉल्यूशन वगैरह होता है, वो सब रिमादी जब आप कोई भी देता है वो बहुत शानदार देता है। पिंपल ट्यूब को भी बिल्कुल आपने ऐसे ही लगाना है। ओके जी सर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को आपने अपने पूरे चेहरे पर नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि जहां जहां मसला है, जहां एक्नी, जहां निशाने, वहां वहां की सूरत में इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल यही तरीके कार फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी आपको बता रही हूं, ये तमाम प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी के और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला करके देखिए।

0: تم نا گھبرانا.
1: ठीक है, आप बातें बहुत ही प्यारे से गाना एंजॉय कर रहे हैं. साथ ही साथ यहाँ पर मकसूद मला हमें ज्वाइन कर चुके हैं. आपने गाने की फरमाइश कर दी मकसूद मला, मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना लगा देंगे. हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है. ये मौजूद है मोहम्मद शरीफ. 100 दफा आपका जवाब होगा. 100 दफा भाई साहब को ज्यादा ही हो गया. कहते व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अच्छी है. बिल्कुल जी बहुत अच्छी है, आप ट्राई करके देखिएगा. और चाचा खाली तो वहाँ पेनल्टी पे मैसेज गाने की फरमाइश किया है. मकसूद कहते हैं टॉपिक का जवाब है 40 दफा. ओके इरम कहती है लव प्यारी हवे थी तो जो डार आपको डेडिकेटेड ये वाला गाना लगाना. ओके आई ट्राई. अच्छा ये हमारे साथ हैं जी वफा मुमताज अली खोसू भाई गोठ रईस गुल हसन खोसू से. वफा मुमताज अली खोसू कलंदर बख्श खोसू वालेकुम असलाम. मेरे शो तमाम जबरदस्त आए तमाम थैंक यू भाजू मोहब्बत हुआ है.

ओके जी वासु भाई तुम्हारा टॉपिक जो जवाब देनो है ठीक आहे जी ठीक आहे अखलाक भाई तुम्हारा भी टॉपिक जो जवाब देनो है ओके हो गया जी अच्छा बिल्कुल जी आप व्हाइटिश के तमाम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रोडक्ट जो भी हैं वो आप लोगों के स्किन के मुताबिक ही तैयार किए गए हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वाइटेज का ब्यूटी प्रोडक्ट फला वाला हमारी स्किन के मुताबिक है, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना कि हमारी स्किन के ऊपर तो कोई प्रोडक्ट सूट ही नहीं करते हैं, तो वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए, क्योंकि इन्हें इस तरह तैयार किया गया कि आपकी ऑल स्किन के ऊपर जो है ना वो अच्छे से सूट कर जाएंगे। तो वाइटेज ब्यूटी क्रीम हो, वाइटेज ब्यूटी सोप हो, वाइटेज का फेस वॉश हो, डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो, या फिर वाइटेज की लवली क्रीम क्यों ना हो। अच्छा, वाइटेज की लवली क्रीम तो आप ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मैं खुद भी इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे बूढ़े जवान हर कोई साबिक है। और जनाब इसके अंदर ओके जी, सो यहाँ पर प्रोग्राम में आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का होगा। यहाँ पर टाइम हुआ है जी न्यूज ब्रेक की जाने जाते, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाला है, वापसी जल्दी आप लोगों के पास। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ ही मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करें। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा।

तव्हां जी असुल न इनकार कंदसि, पर इनकार तव्हां हिते बि न आहे करणो, तव्हां खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। उन खां अलावा पंहिंजे जयपाल भाई के हाय दोस्त को डेरी का शरीफ से है केट करता हूँ, असला है बोलना मेहरबानी में आपका बहुत। अभी ये मैसेज जैसे आपने लिखा है मैंने तो सुन रहा है तो बस उस। और मोहम्मद मीरन जखरानी जी वेलकम कहा जाता है। और सुमाटू गोपांग हमारे सलाम कहते हैं, सिद्रा आई एम लिसनिंग योर शो इन कम्पल्सरी वेरी ब्यूटीफुल वॉइस माशाल्लाह प्लीज प्ले मंजूर सखीरानी हाजिर हलायूं था। किशोर भाई कहते हैं कि अगर एक शख्स 10 लोगों से हाथ मिला रहा है तो जब से होगा एक तो मुना एक किसने बोला आणो जेको एक तो चवे मिली करे सब कुटकी डींदासे न बाबा सब सियाणा आयु सब सियाणा आयु सब सियाणा। अख्तियार अली सिंधी भाई भी सुन रहे हैं। अख्तियार भाई आपको वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। और बताएं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। सुमाटो गोपांग कहते हैं, सिद्रा रात मैंने ख्वाब जो है ना शायद कभी पूरा नहीं होगा। भाई जो तक तो जवाब भी ना है ना वास भाई, थैंक यू मोहब्बत। बस हर कंहिं जो पंहिंजो समझंदा कयो भले ते कोन चवंदमि तव्हांखे जबल इज डेंजरस। अच्छा सिद्रा स्कूलनि जी मोकल करा बाबा, मुंहिंजे वस में त इहो आहे ई नी। सो तव्हां त खैर वेंदा कोन स्कूल, तव्हां जा बाक़ी ॿार वञनि था, सुठी ॻाल्हि आहे न, ॿारनि खे पढ़ायो लिखायो बाबा, आई एस बनायो।

बाबा छो त जेका शइ न थींदी हुन जे बारे में त ख़बर हूंदी आहे न। दर्दे दिल कहती टॉपिक चंदा दस ओके ओके भाई समझाए मुखे रिक्वेस्ट न मोकलिन आई एम छोकरो बाबा ये थोड़ा मतलब क्रेक आहिनि दिमाग़ खां जेके तव्हांखे रिक्वेस्ट मोकिलनि था आकर मारी छॾींदा कयो समझो। और ये हमारे साथ हैप्पी आ चुकी है। हैप्पी स्कूल खां मोकल मिली वई आहे तव्हांखे वालेकुम असलाम तव्हांखे चवनि था भली करे आया अनवर जवाब ॾिनो आहे लिदड़ी कहती ये मेरा मून है आई बिल्कुल हम समझ जो फजीला सिंधी हमारे पी ट्यूजडे ईट बेस्ट आरजे ऐसी है जानो सारा तुम बताओ कैसी हो कैसे सनमाओ एंकर बाजी और ऑल स्वीट सिस्टर्स को भी ओके। अच्छा इस गाने की फरमारी इरम ने कर दी थी मैं डेडिकेट जा

भले रखो बाबा भले रखो मोकल गई। उनके अलावा तुम पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो बुधायो था तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई को न या फेस वॉश अड़ो था। अच्छा कमर जमान बलोच कहते हैं सिद्धराज जी आप कैसी हैं चल रहे हैं आपके शो में आपको वेलकम कहा जाता है बहुत शुक्रिया थैंक यू।

0: It's
1: हर जो आवाज जीएटीआरई एफएम नाइट्स सिंध तदा
0: इट्स 2 पीएम इस ब्रॉड
2: अगर खूबसूरत अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
3: जो सिर्फ डी में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स के बने चमकदार में तम ती असली ग्लो स्किन हर नियोकोन
1: अभी जीए हैदराबाद मटियारी F.6
4: पास सिंध
1: जो आवाज़ हो।

बिल्कुल जी हिकु सोणो वरी पाण खे ठाहे थो आए हाय समझो था खूबसूरती किथे वञी पहुचंदी सुबुह इस्तेमाल करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम।

अगर तव्हां कोई वॉश मौजूदु आहे जेको हाइलोरो सां तयार थियल आहे उनखां अलावा मूंखे महसूस थींदो मॉइस्चराइज़ रहण तव्हांजी स्किन क्लीन रहे थी तव्हांजी स्किन हाइड्रेट बि रहे थी सो ही सभु डी स्किन फेस वॉश जे अंदरि मौजूदु आहे जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी दम त आहे प्रोडक्ट में डी स्किन ऐं डी स्किन वाह वाह पोइ त वाह वाह थी वेंदी भई मंज़ूर सिंह मतिलबु ॻाल्हि करे मूंखे ॿुधायूं।

कुछ रेजी रहे मैंने। अच्छा ये महर भाई हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम बाजी, वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त में सुनाए, कोई गाना सुन लीजिए, सारे गाने आपको वेलकम की इरम तो है वो अच्छी बात। अच्छा उन्हें कहा अलावा गोट मोमन तैयब थे, वो कहा भी बोला थे, वो कहते तवान जो शो वेरी नाइस आए, थैंक यू वेरी मच प्यारा भाव। अच्छा हाँ सखीराणी खां पोए मां गानो बुधंदा, ही गानो भी ढो खूबसूरत गानो है, मुख्य मेहताब हा कई शायद।

अरे चाचा चए थो प्रोडक्ट्स में दम आहे पर इहो तव्हां जेको चयो न मूंखे सफ़ा ॻाल्हि सम्झ में तव्हां सही था चओ चाचा वॾो माण्हू जेको आहे न हमेशह सही ॻाल्हि कंदो आहे ऐं तव्हां पोस्ट खे लाइक और अलीज़ा बि हमारा शो सुन रही है अलीज़ा को वेलकम कहा जाता है।

त मां लॻायो पिया ऐं तव्हां कंजूस बि आहियो जेके नथा वठो वठो बाबा ख़ूबसूरत थियण त हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे सो तव्हां बि वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश सोचो था त अञा असांजी उमिरि नाहे थी असां क्रीमूं नायूं हणंदा त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश वठी सघो था उहो इस्तेमालु करे सघो था कोई लॻाए सघे थो सो तव्हां बिल्कुलु फेस वॉश ट्राए कयो तव्हांखे यकीन ॾाढो वञंदा नंबर ते तव्हां रातो लाइ अच्छा सादी तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अची पियो थैंक यू हुनजे लाइ अब्दुल कदमाजो दे प्रोग्राम को पसंद करते हैं निदड़ी कहती है कि ये किसने बोला वो बताया तो सही और कहती आई एम नॉट जेलस पर लग रहा है कि हो रही अच्छा अदा चए तो सको नालो तोते माँ कुछ बतायो तो खबर तो पवे थैंक यू सो मच प्यारी और इनका अलावा सर मेरा एक और गाना जो आपने बोला है वो ना बोला है तो इंडियन गाते हैं और आकाश जयपाल हमारे साथ कहते हैं मैं हूँ और आपने जो सीए वो भाई मुझे कैसे पता मैं कोई रिंटी हूँ आप अपने घर वालों से बात करें अच्छा दर्दे दिल लगती है कि उन लोगों पर सलामती है जब कभी रूह से आजादी दी तो उन्होंने दिल की किस्सों में जाना हाँ सर जवाब तव्हांखे बिल्कुल ॿुधाए वेंदमि ॻाल्हि या पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न कयो जल्दी करे वठो टेम न आहे बाबा वाह ये हमारी सफ़ा भली आहे तव्हां लॻाया था कोन अच्छा कमर भाई कहते हैं कहां से जहां तुम हर वक्त वाह वाह वाह वाह कहते हैं कि तेरे बदले से कहीं बेहतर है कि अज़ियत ही गवारा कर ले कुछ खुदा ऐसा करे तुझको मोह में हम तुझसे किनारा कर ले आए हाय

0: चलना है।
1: अगर ये जो मेरा रोजगार है ना, मैं रोजगार ना ही बोले और मैं डिसी लगे तो तवा की गोठ जा सरपंच आयो बिल्कुल मुखे में लगे तो मानू अच्छी जन मां भाई सभी जो मसला हल करने वेठी आ मसला केड़ो प्रॉब्लम आ है सदा ने फरमाइश किया और कहती है मूड कदी क्यों मूड ऑफ है तो फरमाइश कर चुकी है प्रोग्राम जो किनो करे छींदा आयो।

0: टोकरी क्या दिमाग का दही बनाने वाला सवाल था जाता है। अगर एक इंसान आएगा तो काउंट अवे होगा, बाकी सवाल के जवाब बनते पे
1: नेहों से तेरा नाम।
0: ओके सो बिल्कुल आप फेस वॉश इस्तेमाल करती रहिए जी स्किन का।
1: किस तरह
0: पान कहते हैं तू अस लिसनर्स जो वडेरू आई अल्लाह जाए उदा पग किथे आ मुंजी
1: वो साथ रह के भी है जुदा।
0: ओके जी आकाश जी पाल भाई हमारे साथ है, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ। अच्छा खुद बोलोगी सुनो नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ वो तो बस मूड मूड की बात होती है।

जी जवार मोहम्मद बच्चन, थैंक यू भी बहुत शुक्रिया, और सारे लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम में मैसेजेस किए, शामिल रहे। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, यहाँ पर हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है। सो वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे थे पई बाबू 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कंदा ऐं वेंदे वेंदे बि तव्हांखे चवंदी वेंदमि बाबा त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश हुजे या वाइट एज जा प्रोडक्ट्स हुजनि, उहे सभु तव्हां ट्राए करे ॾिसो, तव्हांजी ख़ूबसूरती जे मुताबिक़ ई आहे, तव्हांखे कोई बि नुक़सान न पहुचंदो बल्कि तव्हांजी स्किन सफ़ा सुहिणी सुहिणी थी वेंदी। सो मर्द मायूं सभु हणी सघो था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लॻाईंदा रहो ऐं सुहिणा सुहिणा थींदा रहो। सो किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत ख़ुआयूं, जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया, जंहिंजा गाना रहिजी विया, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी न आहे बाबू सिन सलामत सां, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: صباح. अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
0: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
0: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular. मिट्टी जो
7: वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबत इजलास कस्टम पाउंडेड वेयर हाउसेज की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत. शहबाज शरीफ चयो तो कस्टम पाउंडेड वेयर हाउसेज में भी बेज़ाब्तगी की का भी गुंजाइश न आए. बेज़ाब्तगी में मुलविस अमलदारन खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वे. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सां बहरीनी जी परडे॒ही वज़ीर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद जो फोन ते राबितो. बहरीनी परडे॒ही वज़ीर पारां जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर कई. पाक सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे ते वाधायूं बि डि॒नियूं वयूं. बहरीनी परडे॒ही वज़ीर पारां ख़िते में अमुन वारनि पाकिस्तानी कोशिशुनि जी बि हिमायत कई वई. अमेरिकी सदर जो जंग में ईरान खां थियल नुकसान जो अर्ज़ालो कराइण जो मुतालबो. ट्रंप चयो आहे त अपना हर्मुज़ ते अमेरिका जो 100% कंट्रोल आहे. बारूदी सुरंगूं साफ़ कयूं वयूं आहिनि. ईरान हाणे कंगाल थी वियो आहे. वटस पैसा न आहिनि. ग़ज़ा बाबति अमुन मनसूबो रद्द करण ते नेतन याहू खे जल्द जवाब ॾींदड़.

0: आमने हरमुस जो तहफ़ुज़ आमिर की हमला रोकण ऐं नाकाबंदी जे ख़ात्मे सां सलाहियल आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराग़ची चयो त आमने हरमुस जी बंदिश जो वाहिद सबब अमेरिकी इसराइली जहरियत आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर जो जर्मन हममुनसिब सां फोन ते राब्तो करे उमान सां जारी मुशावरत बाबति बे आगाह कयो। आज़ाद कश्मीर में थियल चूंडनि जा टे मरहला मुकमिल। नून लीग 38 सीटनि मां 24 ते कामयाबी माणी हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में अची वई। पीपल्स पार्टीअ जो 12 सीटनि सां बि॒यो नंबर। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर पंहिंजी सीट खटण में कामयाब। अवाम दोस्त बाज़ू पार्टी हिकु सीट हासिल करे सघी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस IPP जमायत इस्लामी समेत ॿियूं पार्टियूं नाकाम। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सरबराह सरदार अतीक बि हाराए वियो। अॻोणो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास राणा खे बि ॿिनि तकनि तां हाराए वियो। मौजूदा सिस्टम नाकारा ऐं हुकूमतूं नाकाम थी चुकियूं आहिनि। आईन खां मथां को बि कदम न खयो वञे। नवां यूनिट जा सूबा बि अवामी राय सां ठहण घुर्जनि। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त अवाम जे खीसनि ते टैक्स जी सूरत में धाड़ो न हयो वञे। सिंध हुकूमत कराचीअ खे चयो आहे सूबे में करप्शन राज क़ाइमु आहे। पीपल्स पार्टी जे सादिया जावेद चयो आहे रांदो गढ़ी यासीन में आबादगारनि जो पाणीअ जे कोर्ट ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते धरणो। आबादगार काबलू स्टाफ वटि शिकारपुर लाड़काणो रोड ते धरणो आयो। आबादगारनि जो चवण आहे त मुनसिपाणी पाणीअ जी कोर्ट ख़तम कई वञे। पाणी मिलण ताईं एहतियात जो सिलसिलो जारी रहंदो। धड़ो लग वाली शाह धरणो मुरादपुर में सिम नाले जी खाटी न थियण खिलाफ़ 10 ॻोठनि जे रहवासियुनि लोटिया स्टाप ते एहतजाज कयो। सिम नाले जे 10 सालनि खां खाटी नाहे कराई वई। सिम नालो गंद सां भरिजी वियो आहे। बरसातनि सबब सिम नालो ओवरटॉप थी वियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि तां घारा लॻी रहिया आहिनि। वाली शाह सिम नाले जी खाटी कराई वञे। ॿी सूरत में अदालत जो दर खड़काईंदासीं। टंडो आदम में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ते मुबैन कब्ज़े ख़िलाफ़ उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज। अॻवाननि जो चवण आहे त बासर वकील स्कूल खे पंहिंजी मिल्कियत ॼाणाए राति जे वक़्तु भित ऐं दरवाज़ो लॻाए छॾियो आहे। स्कूल ते कब्ज़े सबब नियाणियुनि जी तालीम मुतासिर थी रही आहे। कब्ज़ो ख़तम करायो वञे। सिंधड़ी वेझो नींगरी आमना शहर मिठड़ाओ केनाल में ॿुॾी वई। ॻोल्हा जारी आहे। वारसनि पारां मिठड़ाओ केनाल में पाणी घटाइण जो मुतालबो। जो चवण आहे त 13 सालनि जी आमना शहर मिर्गीअ जी मरीज़ आहे। दौरो पवण सबब केनाल में किरी हुई। ॻोल्हा लाइ केनाल में पाणी घटायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आप FM 91.6
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो रण में आसान ताई दस्तयाबी करे फसल के अना भी शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमन को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुमसे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: कुछ और पर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: बात मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएगी।
4: पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

सोना से है कामयाबी। स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर थियल तीन एडिशनल जजेस उहिदे जो हल्फ खणी वरितो। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमेर मजीद मलिक ऐं जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद हल्फ कयो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर टिनी जजेस खे हल्फ खणायो। सदर अस्पताल सरदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत ॿई हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस जी मुक़ररी ऐं कुझ जे मुदे में वाद जी मंज़ूरी ॾिनी वई। सदर सनत ऐं पैदावार बाबति हारून अख़्तर खे वज़ारत जो सलाहकार मुक़रर करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। वज़ारतनि जी सदर ते फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबति इजलास। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस जे थर्ड पार्टी ऑडिट कराइण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में बेज़ाबतीअ जी का बि गुंजाइश नाहे। बेज़ाबतीअ में मुलविस अमलदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। नायब वज़ीर-ए-आज़म साहिबदार सां बहरीन जे परेही वज़ीर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद जो फोन ते राब्तो। बहरीनी परेही वज़ीर पारां जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जी ख़्वाहिश आहे। पाक सऊदी ऐं तुर्कीअ जे दिफ़ाई मुआहिदे ते वाधायूं बि ॾिनियूं। बहरीनी परेही वज़ीर पारां खिते में अमन वारनि पाकिस्तानी कोशिशनि जी बि हिमायत कई वई। यमन जे हौसी बागन जो बाबुल मंडब में कारकू जहाज से हमलो। हमले जा टे मेंबर फांसी विया। मेरी टाइम सिक्योरिटी ज़रिए मूजिब पानामा जे झंडो लगल गहरी जहाज के मिसाइल ज़रिए अमान वेझो निशानो बणायो वियो आहे। हमले जे नतीजे में जहाज जो डेक मुतासिर थियो ऐं टे मेंबर मारिजी विया आहिनि। दुनिया खे ॾेखारे छॾियो आहे त ईरान मज़बूत ऐं शिकस्त जो गुन आहे। कंहिंखे बि यकीन न हो त ईरान अमरीका खे शिकस्त ॾींदो, पर तेहरान करे ॾेखारियो आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त ईरान पाण खे शिकस्त न थियण जोगी ताक़त साबित करे ॾेखारियो आहे ऐं हाणे अमरीका ॻाल्हियुनि लाइ मिंथूं करे रहियो आहे। आज़ाद कश्मीर में थियल चूंडनि जा टे मरहला मुकमल। नून लीग 38 सीटनि मां 24 ते कामयाबी माणे हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में अची वई। पीपल्स पार्टी जो 12 सीटनि सां बियो नम्बर। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर पंहिंजी सीट खटण में कामयाब। अवाम दोस्त बाज़ू पार्टी हिक सीट हासिल करे सघी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस IPP जमायत इस्लामी समेत ॿियूं पार्टियूं नाकाम। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सरदार अतीक भी हाराए वियो। अगोड़ो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियासाना खे बि ॿिन तकनि तां हाराए वियो। मौजूदा सिस्टम नाकार ऐं हुकूमतूं नाकाम थी चुकियूं आहिनि ऐं इन खां मथां को बि कदम न कयो वञे। नवां यूनिट जा सूबा बि अवामी राय सां ठहण घुर्जनि। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे

वावड़ो वेझो अदालत मां फरार थियल विन बदनाम ढाडेलन वारे वाक्य जो केस दाखिल एस एच ओ जी फरियाद ते वाक्य जो केस ॿारहं अहलकारनि मथां वावड़ो थाणे ते दाख़िल कयो वियो। अदालत मां फरार थियल बदनाम दोहारी राहिब शहर ऐं मोरियो शहर जी पुलिस जो ऑपरेशन ड्रोन जो बि समारोह वेझी ॾिनो वियो।

प्रोग्राम जो इमारतूं सभु हाल बेहड़ अलसी खितन मां सबबु 15 खां वधीक शागिर्दनि ज़ख़्मी घोट सां वलकटियो में गर्ल्स स्कूल जा चापड़ किरण सबबु 12 शागिर्दनि ज़ख़्मी थियूं। अंगोरनो जे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल काबिल नोड़े जी छित जा चापड़ किरण सबबु 3 शागिर्द ज़ख़्मी।

0: आए सबैलाई तमाम बडोदिया पाइन 14 अगस्त के संत एक ईदी बराबर समझायो
1: ता पाजी कंट्री का नी बे कंट्री में शिफ्ट थिंदो ना तो अवां के पो एहसास थिंदो त है असा जो मुल्क आजाद आए इंदी असंग आजादी छा है
0: आज़ादी जो ॾियारो वॾे ते जयानो फिरो समराए रहिया आहियूं असां आज़ाद आहियूं ख़ुदि मुख़्तियार मुल्क क़ौम आहियूं
2: समय समूरे मुल्क में आज़ादी जो जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी सूबे जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार ख़ासि स्टॉल बि लॻाया विया शाम जी अदालत अॻूणे सदर बशार उल असद खे घरू वेड़ कराइण समेत मुख़्तलिफ़ इल्ज़ामनि हेठि मौत जी सज़ा ॿुधाए छॾी अदालत बशार उल असद जे

0: ऐं शामी फ़ौज जे अॻूणे कल आतिफ़ नजीब खे बि मौत जी सज़ा ॿुधाई। बशार अल-असद हुकूमत ख़तम थियण बाद शाम मां फरार थी रूस में पनाह वरिती आहे। ऐं कोलंबिया में ज़लज़ले सबबि फौतियुनि जो अघु वधी 132 थी वियो। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अख़्तरनि मुजिब मलके खां वधीक माण्हुनि जी दबियल हुअण जो ख़दशो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हन बिक्री जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारी साई ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधायन लाए तमासा गदाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणु छटाई करण में आसान बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स भाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: या करीबी रابطہ करें।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची
1: आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: सारे दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
0: आप सुन रहे थे
3: कुछ दिन खबर तरफ बनी रही है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत हैदराबाद 91.6, सिंध जो आवाज।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है।

0: आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो उतरदा रहो।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वध
1: फजाओं में रची बसी है बन असास जीए एफएम की आवाज
2: फैम नेटवर्क सिंध की आवाज
0: हक सच जो आवाज जीए हैदराबाद 1.6
3: अब आप सुनेंगे नेटवर्क पर
1: ब्रॉट टू यू
0: सोना मिट्टी जो

0: गीत संगीत जे हैदराबाद मटियारी FM 6।
1: काफ़िले से सजी इनकी मेहमान नवाज धरती, जीबो सकाफ़िले से की मेहमान
2: की फजाओं में रची बसी है मोहब्बत का सफ़ेम की आवाज,
1: की आवाज
0: हक सच जो आवाज, संगीत जो आवाज, 91.6 बुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: 10 तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो उतरदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेट KTN न्यूज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान
2: वधायदान पान के शिकस्त ताकत साबित करे ॾेखारियो आहे ऐं हाणे अमेरिका ॻाल्हियुनि लाइ मिंटूं करे रहियो आहे। यमन जे हो

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

صرف غلام کیے بادشاہ جانے.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
0: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
4: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दी।
5: जाओ जी सब तैयार, ये घराना है शाहकार।

0: सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुमा बहुत ही कबीर खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़ फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं।

0: देखिए रियल एक भूल रोजाना रात 7 बजे सिर्फ मिनट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
2: फाजासिफ सेवायत अमेरिका ईरान माहिदे जे वेझो पहुची चुका आहिनि। कुझु ॾींहनि खां थींदड़ घुराई सुठियुनि ख़बरनि तरफ़ वञी रही आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बियाबास।